0: हुए पहल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-679-9991।
0: स्वीट महल।
3: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट हो दी सूरत विच तो हड़े हकां दा रखवाला। मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1-800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम, एनी टाइम होम रेनोवेशन। सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमां नूं समय ते करवाउण लई चेते रखो। एनी टाइम होम रेनोवेशन। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 647-271-1735 647-271-1735। एनी टाइम होम रेनोवेशन।
4: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी, ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी। क्वालिटी वर्क, प्रोफेशनल सर्विस, बिल्ड टू लास्ट। मैनसूरी ते स्टोन वर्क, इंटरलॉकिंग फेंसिंग, पैडियो, रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहते हो, लैंडस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, थोड़े एक्सटीरियर प्रोजेक्ट लई कंप्लीट सोल्यूशन ओरकल कंस्ट्रक्शन। रिपेयर तो लैके कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन तक ओरकल कंस्ट्रक्शन दा नाम याद रखना जी। अज ही कॉल करो 1-888-688-8956 या 416-474-6836। Oracle Construction, strong foundations, lasting results।

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ,
1: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।
2: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Yeah, Fateh, Desi Crew. Please, what's up, Asasi? And I can't see. I let the shuri hoya.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: ओ हाँ भी तू फेर आ गया, तेनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
1: साडा देख देख हाल हाथ जोड़ी बैठा काल बंदे सारी ही रैकेट विच इड़े ने बाउल के नू वांगू परेजर।

0: सानू मंजला ना प्यार विरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

सुरमा सुरमा सुरमा कुड़िए अखां वाला जहर कुड़े दिन विच लगे रात रात जई बनकी सिखर दुपहर कुड़े पैंदा ए लचकारा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में। अपनों ने रखा हमें गैरों की

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, इटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: ਇਹ ਹੈ ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਵੈਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸਯੂਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਸਟਾਰਟਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਮਿਲੋ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, 38 ਐਡੀਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਇਨ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-740-5555, 416-740-5555। ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ।
4: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल।
5: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
6: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
4: SM Springdale Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingusi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266।
7: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
8: ਸਸਤਾ

0: पहल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी वाला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 बंदियां दी केटरिंग ले पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9999।
0: स्वीट महल।
3: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। जेकर तुहाडा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तुहाडा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकते। सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आना कानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ां दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1-800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी

0: महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
3: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
2: सच्ची?
3: ओ मुच्ची,
2: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
3: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
2: हुन एड्रेस भी लिखा।
3: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबिकोक, यूनिट 5।
2: कॉल 6477067
4: ਨੁੜਕਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਮ ਫਿਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲੈਮੀਨੇਟ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਪੋਰਸਲਿਨ ਟਾਇਲਸ, ਸੈਰਾਮਿਕ ਟਾਇਲਸ, ਫੌਸਟਸ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਕਸੈਸਰੀ, ਡੋਰ, ਵਿੰਡੋ, ਡਰਾਈਵਾਸ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜੇ ਆਦਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਮ ਫਿਕਸ ਤੇ ਆਓ। 2657 ਡੰਡਾ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, 20 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਔਰ ਕਾਲ 9057962555 9057962555। If you need your home fixed, call Home Fix.
5: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साउथ को अपना साथी बनाओ।

0: नॉर्थ साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ
2: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैनेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड और कॉल 9058409000 ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैनेडन सब्जी फार्म।
3: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी क्वालिटी वर्क प्रोफेशनल सर्विस बिल्ट टू लास्ट मैनसूरी ते स्टोन वर्क इंटरलॉकिंग फेंसिंग पैडियो रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहुंदे हो लैंडस्केपिंग हार्डस्केपिंग थुआडे एक्सटीरियर प्रोजेक्ट complete solution Oracle Construction repairs to like a complete property transformation tak Oracle Construction da naam yaad rakhna ji aaj hi call karo 1-888-688-8956 ya 416-474-6836 Oracle Construction strong foundations lasting results.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: जे कलोटी दा पैगाम वड्डे सारिया दे नाल, जेकर ट्रैफिक टिकट, स्मॉल क्लेम, सिटी बायलॉज जां मकान मालक किराएदार दे पौणे च फस गए हो तां साडे कई वरिया दे माहर तजर्बे दा फायदा लवो। जे कलोटी अजिहा ना तुहाडी मुश्किल कर देंदा आसान। ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट्स लाइसेंस बाय द लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा। जे कलोटी, योर रिकॉर्ड मैटर्स, यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर। नाउ न्यू लोकेशन 7920 हुरंटारियो स्ट्रीट, यूनिट 43 इन ब्रैम्पटन, 905-790 छपिंजा छपिंजा, दैट्स 5790-5656. Jay Kaloti, tried, trusted, most effective.
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
6: HK Movers.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो, CNN टोरंटो।
3: CNN टोरंटो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो और 7 बजन वाले ने ते स्टूडियो दे विच हाजिर ने इस वक्त अंजू सिक्का जी ते नाल मेरे हॉटलाइन ते हाजिर ने का।
4: दिस इज CJMR द वॉइस ऑफ द सिटी, पार्ट ऑफ व्हाइट ओक्स कम्युनिकेशंस ग्रुप, योर ट्रस्टेड लोकल रेडियो प्रोवाइडर फॉर मोर देन 70 इयर्स।
5: बहुत-बहुत प्यार भरने की सत श्री अकाल
3: जी। एक्चुअली तुसी पहला आ गए 5 मिनट, मीता जी बाद च है। मीता जी वेलकम, स्वागत जी आयां नूं।
6: थैंक यू जी, थैंक यू चावला जी। तो सारे आनू प्यार भरी ते निग्गी सत श्री अकाल, गुड इवनिंग।
3: कैसे हो?
6: क्या सुनना चाहते हैं? चढ़दी कला।
3: वही है।
5: मेरे को मीता जी के पास आई नहीं, उनका जवाब क्या था?
3: चढ़दी कला।
5: चढ़दी कला,
3: मैं क्या सुनना चाहती हूँ। हमारा बहन भाई का चलता है, मैं बोलता हूँ कैसे हो, क्या सुनना चाहते हैं। चढ़दी कला। हाँ, चढ़दी कला। मीता जी नाल गलबात करेंगे अंजू जी, उस तो पहला वैदर रिपोर्ट आज दी जिहड़ी तुहानूं सांझी करदी है, काव्या होम केयर वालों स्पॉन्सर की जाती है। मैं डेली दसदा कि जिवें डायग्नोज करके तुहानूं इह मेडिसिन देणगे, तुसीं उस नूं सवेरे शाम दुपहरे जिवें तुहानूं इह दसणगे गाइड करनगे कि इह मेडिसिन इन्नियां गोलियां इवें लैणियां, इस तरह लैणियां, तुसीं उसका सेवन कर दिओ तो बिलीव मी लगातार सेवन करने दे नाल हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता तुहाडी जिहड़ी बीमारी है तुहाडे शरीर नूं छड्ड के दूर चले जांदी है, तुसीं नंबर 9 हो जांदे हो। काव्या होम के खानदानी प्रैक्टिशनर मीता ओझा दी गोल्ड मैडलिस्ट, उन्हां वल्लों स्पॉन्सर किया जा रहा इस सैगमेंट नूं, और नंबर है 647-760-2779 647-760-2779। हांजी हांजी
5: जी मीता जी, मैं तो सिर्फ आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
6: थैंक यू सो मच अंजू जी।
5: जी मीता जी, आज हम किस बीमारी के बारे में बात करेंगे?

0: फील करोगे। अब इसके साथ क्या होता है कि जैसे ठंडी हवा लगी तो उसके साथ इन्फ्लेम्ड हो गए, जुकाम कोल्ड फ्लू वाले जो वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं उसके साथ आपको साइनस की प्रॉब्लम आ गई या फिर एलर्जीज। अब साइनस नॉर्मली जो है वो एयर से भरे होते हैं, तो ये सारी कंडीशन करके क्या होगा कि आपके एयर पैसेजेस में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस करके उसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। और फिर क्रोनिक जब ये कंडीशन बनती आती है तो क्रोनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आपको रहती है। अब ऐसे में आपको स्टफी नोज है, रात को लेटते वक्त जो म्यूकस आपके गले में साइनस इसमें इकट्ठी होती है तो सुबह उठने के साथ ही वो गले में ड्रिप होने लगती है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वॉटरी है, थिन है, फिर उसका कलर भी डार्क होता जाता है, वो बलगम खींच के आपको निकालनी पड़ती है। और इसके साथ रात को खर्रांटे भी आते हैं, नेजल ब्लॉकेज है, दिन में फिर ये रेशे की प्रॉब्लम है, और इसी के साथ आपको सिर दर्द, ये जो हमने एरियाज देखे साइनस के कि आंखों के ऊपर का एरिया है, चेहरे पे आंखों के नीचे का एरिया है, वहां पे स्वेलिंग हो जाना, जिस अफेक्टेड साइनस में इन्फ्लेमेशन हुई है ना वहां पे सोजिश भी आ जाती है, और साइनस की पेन करके ये जो स्वेलिंग करके नर्व पेन है वो आपके दांतों तक जाता है, सो अपर टीथ में भी आपको ये पेन फील होगा, फीवर आ जाना। एंड क्रोनिक केसेस में क्या होगा कि फिर आगे जाके स्मेल के साथ इंटरफियर ये करता है, सेंस ऑफ स्मेल के साथ, तो उसके साथ आपको पार्शियल स्मेल का लॉस हो जाना, कोई स्मेल आ रही है पता ही नहीं चलना। कई बार जो पेशेंट्स भी आते हैं ना कि सालों से मुझे कोई स्मेल का पता ही नहीं चलता है, तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस वाले पेशेंट में ये चीज है, बैड ब्रेथ होता है, तो माउथ का टेस्ट भी कई बार चेंज हो जाना। अब अगर आप इस तरह के सिम्टम से बार बार सफर कर रहे हैं और स्पेशली ये वेदर चेंज के टाइम ये सारी चीजें बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि वी डू हैव, जिनको अभी हुआ है तो एक्यूट मेडिकेशन भी है, 1 वीक 2 वीक्स की मेडिकेशन लेके आप सही हो सकते हैं। तो जिनको बार बार रिपीटेडली ये हो रहा है क्रोनिक साइनोसाइटिस, नाक के अंदर मास बढ़ जाना, बड़ों में नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, तो छोटे बच्चों में एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए हैं, या इम्यूनिटी लो है, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट जो है काफी हेल्पफुल रहेगा। सो फील फ्री टू कॉल अस, काव्या होम्यो केयर, वी आर ओपन मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, एंड लोकेशन है हमारी 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। फोन नंबर है मेरा 6477607769 6447607779।
1: जी बहुत शुक्रिया अमिता जी, थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू चावला जी,
1: जी मेहरबानी है संजी काव्या होम के अमिता ओझा जी। ते लो फिर हिंदी समाचार ताली पेश करने वाले हैं, जिस नु लेकर के हाजिर ने मैडम अंजू सिक्का जी, परंतु कहते ने के एक गीत क्यों ना सुन लिया जाए, अज नो इंग्लिश विद इन 1 मिनट भी प्ले किया जाएगा, और तुहानू अज तोहफे जेडे ने सीके लिक्विडेशन तो भी दवावांगे, और तुहानू जेड़ा है सीके लिक्विडेशन दे तोहफ्यां दे नाल नाल पिज्जा मशीन दा खवावांगे, जिथे 2 लार्ज पिज्जाज वे मन पाउंदियां, 4 टॉपिंग 24.99 सेंट दे विच तुसी पिज्जा पिक कर सकदे हो मन पाउंदा, 2 डिपिंग सॉस नाल, 2 फिलोसफर्स टेल्स ब्रैम्पटन हॉस्पिटल, नंबर 9054921222। इस दे नाल प्रोग्राम दे विच मैं भी दस दियां कि तुसी जेकर IPTV बॉक्स की सर्विस लैनी है, 12 महीनिया का $100 ते असी तुहाडे लई 2 दिन का ट्रायल पहला बिल्कुल फ्री दिने हां। नंबर है जी 9647548569 6475545859 ते कॉल किया जा सकता है। लो फिर खूबसूरत नगमे की ब्रेक, ते ब्रेक तो बाद तुहाडी सेवा दे विच हिंदी समाचार अंजू जी पेश करनगे। कल ते अज मैनू काफी फोन कॉल आईयां ने, मैं अपने स्रोतियां दी कचहरी च रखना चाहुंदा कि बदला लियाओ जी, बदला लियाओ, तुसी कर सकदे हो बदला, तुसी कर सकदे हो बदला, बदला असी नहीं लिया सकदे, असी तुहानू खबरां सुना सकदे, असी तुहाडे नाल सिर्फ एक डाकिए दी तरह, साडा जिहड़ा फर्ज है वह एक डाकिए दी तरह, उत्थों खबर चक्की ते उहनू बिना तरोड़ मरोड़ तो बिना कटवट तो उसे तरह तुहाडी कचहरी दे विच रखना, यह साडा धर्म है, साडा फर्ज है। हां जिहड़े कट वट के मसाला मसूला ला के रखदे ने उहनां दा फर्ज है, उहनां दा धर्म है, हुण तुसी दुधा दुध पानी दा पानी करना, बदला तुसी लियाउणा है, ते जे बदला आपां लियाउंदे लियाउंदे वोट उहनूं पाउणी आ कि जी इह ते साडे मामे दे मुंडे दा मुंडा उहदा गां यार आ, ਤੇ